0: श्रोता जनो, ऑकलैंड श्री सत्य साई संस्था तरफ थी आप सबने अमारा जय साई राम। दर रविवार सवारे 7 वाग्या थी 10 मिनिट सुधी आप गुजराती भाषा में साई वचनामृत सांभळी शकशो। याद रखो, दर रविवार सवारे 7 वाग्या 10 मिनिट सुधी साई बाबानी अमृतमय वाणी सांभळी कृतार्थ थवा प्रयत्न करशो। आ छे प्लेनेट FM 104.6।
1: आओ सारे इकट्ठे होके साई दिलां दी पाईए।